0: चेतव कलिंचिन कागई तेथा साई तेसगोल एन बो कस्कलिंग कसरता नोग तीन वन तो चीने लोगो युवक बाई में तीन वगन डो किगुरन वल्डन पौर काको मंच के बगिंग के तीन मोर चिंगे मंडन बो किप कोसब इन बो के एन एच सी आर के चुती आगे चेंग वल उत्य तीन बचो किन तीन बो कोई मुंत के वाय को न्यों के ना से सके मीट वाइफ से कोंगे लेलची बाईशो ने क्वाग कमा के बगिंग के नोतन कुले कोंगे लेलची नो नोतन कुंडा वले ngoi सबे था बिक बाई मोनी अगो नोतन कमांड के चेंग वल उत्य तीन बो किप चुलियां सबे ते को एक के बाईशो ने के को न्यों चो तग एलगोयन हन कोई मोन कोबन बोंग हेचरे ते क्लारिसा ओगांगा को मोक बगिंग के नोतन कुले को वल्ला के कोंगे लेलची नो नोतन कोई कोई मोतेतन बापर और कोसुकांग ने बने कसरतन उबिकिरु तोचिन सुविताली कुमकिंगे कोन्योइसेत कमाउकांगा कुले को न्योर बोतन बाका बेते तबसबन के तमनो इंते सबक सकोल लिंक वेनो ता बिचोतना को किबित यौत जोतन इन कोनो ता तरीका गिन के ससम अनंतरिक्ष समागिन करावे ता बससीत केनिने तन्ना अगो इतरे को इन रवाने तन अगो इन कोनो ता मे ओशी जोतन को बित इन कोनो ता बक्का मतिक तमन क्लो सिगुम चितोरे तितन बसगी शेत अगल लगे कुबोत लोगुक तमन क्लो चिंगे चेन जेगो मकिंग गेरी से तेन सबिताली शगा लगे को कोनो मकमुंत चबीके चेन कबीत कुर्सनो तरीन कसरता ने तथा तक कोंडोई प्रेसिडेंट विलियम रूथ तो ये तनो एन पेतु तब चमता तो वे गीतने न्यो ने के बगेन का कावना स्टुगल चबो इमोने कोबोतस तगोल ला सच बो सेक्टर मति लिलिंडो सुबित के शेंग वलो ते तन बगे चुल या को तिंगा को गेले चिनो से चोतन को थोग अनन को त सेंता को न्यो इगेन काउंटी से चतेर तेरे को तिंगे अग सी बी ए अगो कमोय नले चुतना कावना नबो एम्बो नोटन को सिसिल बारीरे कागे कोची कुर्से थे कोंडो इक बोकनी सोशे के तेर तेर इनके बवरतन बाकी मिनी ने कोगेर को लेकाई तू या बी के आगो चुपता यो ते के बाशे मेन कोशे का मिसिंग को ये के थकिंग एलवनी शेतनो नमीतन थाई नितन को सब कागे चे को बबरा सालु स्वेते ने बिल्चिंगे ने शेरे तन बो में बात आप कौन गंतिंग अतु ते इन बाकी मिनी ने नगोंगलोले कांगो वाशिन तारे थे तकनी सोशे के तेर तेर इनके बवरतन ले कोंग अगो बात तू ते के बाम को तारे कनी सोशे के तेर तेर इनके बवरतन कागोतेस्ता ही प्रेसिडेंट विलियम रूथ कुले मावे एक्सेलेट सरकारी नीने मगे तिरमकी मांडा कंपनी थगें के नमीतिन इनके बबरतन बमका डीएन काउंटिन बकाशा डोइन मायत कुले किबेंडी की कोचिन कांडरासा कंपनी थगे नलिल अगो कई ngon कुले वेंडी की बरोस्तोय अगो बा कांडरासे नोतन सुबीत कोबेल गे बिल्चिंगे ब्रोइन नोतन सुबीत की गोची बैशो नोतन नमा कंपनी नोतन कमोले की गोतेस्ता कोनलिल मेंगी की बक बबरतन बकाशा डो चौथन को सेंडनी क्वाला गेलो को ये क्यों में थे कि तस्से ताई कि सुबह सुबह के बोने को इन दाह ये तो ताई साई तमन तमन आगे इंगे के तू तो सेंड चुतन आगे लगे इन वगन दाह के गुरे नॉन वल्डन बोर
1: जॉन कोगलो को ये अभिमित इन वगन दाह एंटाइच एफएम

मोटो सारा बड़ा एजी तरह दे थे लेते गए थे तोरे दिन ही नहीं लेते मजे भी गएंगे तगे मजे भी गएंगे वैसे लोग जीते ना उतर गए ना बसी रही थी फागे रहने और जगह 100,000 है सो जीते ना तगे थे गए थे लेते मजे भी गएंगे स्टार 274 आश आगे थे गए नंबर 2 है स्टार 274 आश तो मगे न्योर 100,000 के शिलिंग्स आएंगे ये स्टार थे नहीं देखो से गारब 20 जितना ये मेन पोले पोले स्टार 274 आश आगे थे लेते गए ना तेरे मिते नंबर 2 चांग बोनस पे दे 10,000 के शिलिंग्स आगे रे चोवा ने गाना गा गोनी 32,000 ए Florence mwana mwana gani. Chili kutoki star 274 Asha. Agitile ticket note de miten number 2.